0: हजारमा दिस होम वर्षभरि रिचार्ज गर्नुहोस् र इन्स्टेन्ट लकी ड्र मार्फत एक महिनादेखि एक वर्षसम्म फ्रीमा हेर्ने अवसर प्राप्त गर्नुहोस्।
1: दिस होम, खुसीको कनेक्सन।
2: रंग बहार
3: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
2: बर्जर पेंस ले घर रंग लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जितने मौका पाउनु होस्।
3: साथ ही 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि।
2: घर रंगाओ, खुशी बनाओ, उपहार जितने अवसर पाओ। बर्जर पेंस

0: का साथ व्यापार व्यवसाय करना, आर्थिक जोखिम कम करना, विश्वास हामीलाई गर्नुस्। यूनाइटेड अजोर इंश्योरेंस, यूनाइटेड बाय ट्रस्ट।
1: रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्ट्ज।

0: का साथ व्यापार व्यवसाय करना, आर्थिक जोखिम कम करना, विश्वास हामीलाई गर्नुस्। यूनाइटेड अजोर इंश्योरेंस, यूनाइटेड बाई ट्रस्ट।
1: ज्योतिष र विज्ञान को सम्मिश्रण कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान।
2: हजुर, तपाईहरुकै प्रिय कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान अब रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्जमा हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न नभुल्नुहोला।

0: का साथ व्यापार व्यवसाय करना, आर्थिक जोखिम कम करना, विश्वास हामीलाई गर्नुस्। यूनाइटेड अजोर इंश्योरेंस, यूनाइटेड बाय ट्रस्ट।
1: रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्ज।
2: अहिले रातको 9 बज्यो, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्ज।